0: मेरा कर्म जित भेटे साधु के चरण।
1: भगवान राम
2: पेरने की चुग्गी पहुंचे भगवान जिना रहा तू आयो ना रहा तू मैं सदके जा कुछ आदास छाया पीलनी ने त्रेता युग दे मालिक भगवान रामचंद्र जी बैठ गए। महाराज मैं गरीबनी ते बख्शिश कीती है ना नहीं पीरनी तेरे प्यार तेरी जे पीरनी भुख लगी है आखो श्रीवाल पीरनी डाढ़ी भुख लगी कुछ खिला रब नू बड़ी भुख लगी। बाबा जी कलेरां वाले बाबा जी बाबा नंद सिंह जी महाराज प्राप्ति वाले महापुरुष नाम जप के नाम दी प्राप्ति नाम जपना होर चीज है नाम दी प्राप्ति हो जेड़े परमार्थ दे राह ते तुरे नु भाई उन्हां दे भी चरण चुमी है तुरे तां जेड़ा तुरे है ओही पहुंचण दी आस रख सकदा है कदे ना कदे सी ते जेड़ा परमार्थ दे राह ते तुरिया ही नहीं है वो पहुंच किवें सकदा गली बाती तो पहुंचिया नहीं जांदा। भाई गुरदास जी ने लिखे है पूछ तो है पधक से मार्ग ना धरे पग प्रीतम के देश कैसे बातन से जाइए गल्ला नाल आजकल दी दुनिया गल्ला नाल ज्ञान चाहुंदी है और भाई महापुरुषां दा कथन है गल्लां नाल ज्ञान नहीं मिलदा ज्ञान ना गली ढूंढिए कथना करड़ा सार ए तो बड़ी करड़ी मनसले औखी काटी पर जेड़े तुर पैंदे हन ते करदे हन साई दे मिलन दे कर्म चंगे फिर उन्हां नूं प्राप्ति हो जांदी है। ज्ञान ना गली ढूंढिए कथना करड़ा सार कर्म मिले ता पाइए होर हिकमत हुकम कर्म कर महापुरुषां दी संगत करके सानू भाई चंगे कर्मां दी प्राप्ति हो जांदी। कई कहंदे जी संतां दी महापुरुषां दी संगत कीतियां की मिलदा ते बाबा जी कहंदे सन केड़ी वस्तु नहीं मिलदी आखो श्री वाहिगुरु महापुरुषां दी संगत करके केड़ी वस्तु नहीं मिलदी चार पदार्थ जे को मांगे फिर हजूर कहंदे सात जना की सेवा लगी धर्म अर्थ काम मोक्ष। फरीद नूं भी पता लगा सी कि कोई माता है वो दस लेंदी है अज रब तुठा है अज रब रुस गया है चलो मना उस माता कोल चलिए मैं रब नूं मनाउण वास्ते रब नूं रिझाउण वास्ते कई कर्म कीते हन पर अजे ज़ियारत नहीं होई कि ओ सिंगार मिलन के ताहीं।

मांगो राम ते इक दान, आई बेग फॉर वन गिफ्ट ओनली फ्रॉम द लॉर्ड। मे ऑल माई डिजायर्स बी फुलफिल्ड मेडिटेटिंग ऑन एंड रिमेम्बरिंग योर नेम। ओ लॉर्ड, पॉज। मे योर फीट अबाइड विद इन माई हार्ट एंड मे आई फाइंड द सोसाइटी ऑफ द सेंट्स। मे माई माइंड not be afflicted by the fire of sorrow. May I sing your glorious praises 24 hours a day. May I serve the Lord in my childhood and youth and meditate on God in my middle and old age. O Nanak, one who is imbued with the love of the Lord is not reincarnated again to die.

0: जो सांस गिरास दियाए मेरा हर हर सोमर से गुरु मन पावे
1: जिसनु दयाल होए मेरा स्वामी
0: तिस गुर सिख गुर उपदेश सुनावे
1: तिस गुर सिख गुर

विस्मादनं विस्मादनांगे फिरे जंत स्मात पौन विस्मात पानी विस्मात अग्नि खे डिवडानी।

Quando vou dormir? ऐसे भान दर्शन दर्शन देखत ही शुद्ध की न शुद्ध रही बुद्ध की न बुद्ध रही मत में राम वही देख मैं तो अपना आप ही भूल गई दर्शन है सुपने यू भी भई कहो की नर्चना उत्तम सखी मध्यम कहती तेने मैनु सुपने चराती साई मिले तो मध्यम सखी कहती फिर कहो की नर्चना उसका अंचल क्यों ना पकड़ ले सपने यू भी भई कहो की ना अंचला उसका दामन क्यों ना पकड़ ले जान क्यों दिता तो उत्तम सखी रो के कहती है की तरह सुंदर पुरख विराजत वो इतना सुंदर सी इतने जलाल वाला सी सुंदर पुरख विराजित पेख मन वंशत वाला

जब इश्क निवास चली थी, इश्क दिन प्यार जब इश्क निवास चली थी या की मंदिर ते की बसी थी, फिर चीजें की कोई कमी थी। हकीकत तो प्यार है, प्यार नहीं तो मंदिर ची कट्टी उजाण का कोई ना, मस्जिद भी मथे टेकने का कोई ना। हकीकत प्यार तो भुले शाह लिखता है, जब इश्क निमाज से गीती क्या मंदिर ते क्या मसीती, फिर जब यार ने आन दीदार दिता, यार को वाहे धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने उस अकाल पुरख नु अपना यार के सुन यार हमारे सच यार कहते प्यारे तेरे नाल बहुता प्यार कि पुराना आदमी हो मेरा यार सब तो श्रोमणी प्यार करने वाले धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी अकाल पुरख नु यार कहते। लिखता है जब यार ने आन दीदार दिता, इश्क का सिजदा किया, यार सामने आके खड़ो गए, फिर होया कि बुले ने कमाल किया, कहता है जब यार ने आन दीदार दिता, गल दसनी नहीं जड़ी बीती है, वो दसन वाली चीज जे कोई दसदा फिरदा है तो गलत है। बाबा जी बचन करते ऐसे लोग, मैं तुहानू रब मिला देना, मैं रब हां नरमकार। बाबा जी बचन करते सन झूठ को लिया, जिथे मैं उथे तो रब होता ही नहीं। आक्रोश मैं तो बिछोड़ा है, क्यों भाई जे तू कहता है तो मैं नरमकार मिला देना, मैं नरमकार। हजूर कहते सो अजान कहे मैं जाना, जरा कहता मैं जानी मेरी बड़ी बिरती लगती, कुछ नहीं वो तो अनजान, उन्हें गुरमत नु समझे ही। सो अजान कहे मैं जाना, जानना आर ना जाना। किसी महात्मा ने बाबा धन सिंह जी महाराज के बेनती की, बाबा जी मैं सुनिया तुहानू धन गुरु नानक पातशाह जी ने साक्षात दर्शन होते हैं। बाबा जी कह लगे महापुरश हो जे हां कहने तो हमे आउंदी है, की पता होते ही उनके आपस ही किया, हां भी तो दुराई पाई है, मैं मेरी ने दिखती तेन सु मैं मेरी ने सुनाई तो दूर। इस तरह रात ते दिन का मेल नहीं है, इसी तरह मैं ते तू दा मेल, जब हम होते मैं भी फिरता है तो तू नहीं आए, जब हम होते तब तू ना ही अब तू ही, जिथे तू ना प्रकाश हो जाएगा उथे मैं ही। बाबा जी ने आखिर किया की पता होते ही हो, महाराज मैनू भी दर्शन कराओ। बाबा जी सचखंड में लै गए सामने श्री गुरु साहब का प्रकाश की, लोगों पुछो आ गुरु नानक में मैनू नहीं दिसना था भाई, कह लगे पढ़ाई तो बगैर कोई चीज नहीं मिलती। आखो जितने तक पढ़ाई ना पढ़ी, बच्चा जे पढ़ाई पढ़ेगा तो आलम बनेगा, अखा हो ही है। पर हम इलम बड़ा चंगा लग रहा है अपने मास्टर की संगत, तो गुरमत की पढ़ाई पढ़ के असि वो पढ़ते नहीं हा, नितनेम करते नहीं, बाणी नाल जुड़ते नहीं। जी मेरू दर्शन बाबा जी ने प्रश्न किया साक्षात गुरु महापुरुष हो, पर यह नहीं कहना दर्शन होते मैं तो तू दा मेल,
گل دسنی نہیں جڑی پیتی اے درشن ہی ایسے اے درشن درشن پیکھت میں جیو درشن دیکھ جیواں گر تیرا اج ان درشن سیش گنگا رام دیکھتا پے کہڑے درشن پیار نال آخو تن سر گرو تیجا گر کد سمائے گا میری من دی کافی سما ہو گیا رات دن سا سنگت دے پانڈے جھٹے بجی گئے کتنا سما ہو گیا چھ مہینے کا ٹہری سا سنگت یہ کسی ویلے مر ڈولدا ہے تو آسرا یہی ہے

जो शरत माई आई है, हंस उड़ारी हमार की है, सत्संग रूपी मान सरोवर की है। आप जी ने धन गुरु अमरदास पातशाह जी की बख्शिश प्राप्त की, आज पूर्णवासी की रात बख्शिश वाली रात गंगाराम से कितनी रहे, सोचांगे गंगाराम ने कुल की थी, और गंगाराम ने तक एक मेरी की थी इसी रोज कर जाते। रोज दूजे पासे माया जितनी लग जाए गुरु और संकोच कर, पर नहीं, माया तो वही साड़ी है जिड़ी चंगे पासे गुरु वाली। साईं तुलसीदास जी ने लिखे, माया है दो भात की, दो चलावे राह, एक ले जावे नरक को एक सब शराबा को बाबा च माया ला दो नरका का बुआ खुल जाए, गुरु दे लिखे ला दो गुरु नरक न जोड़ दो। तुम जिथे तन मन न आके जुड़े अपने तनों में पवित्र दर्शन ते शब्द दीते, शब्द गुरु का रूप है। बाबा जी बचन कर दे सर ना लेके अरदास करने की लोड़ ही बेनती की। बाबा ईश्वर सिंह जी महाराज कह लगे, ना लेके अरदास तू किसी नू की दे सकता है, ये तो शब्द वाला ही प्यार वाले दे मन प्रेरदा, मानो शब्द वाला ही इश्क दे हिरदे ते बह के आप प्रेरदा है, आप शब्द का आदर कराउंदा है। ते बाबा जी कह लगे, फिर बख्शिश गुरु आप ही है। तो आप जी ने यह समा एक दिन में दो दिन में कुछ दिन को आप निकले हो, साथ अमृत वेले भी आके जुड़ते हो शब्द, और जिस प्रोग्राम को कदे बना रहे सन बरपुरदार सरदार गुरचरण सिंह जी, दीवा हरबंश सरदार करनैल सिंह जी, सरदार हकम सिंह जी और सारे गुरुद्वारे दे प्रबंधन, आई साहब कदों आ रहे हो, प्रोग्राम बने अभी कदम अपनाए प्रोग्राम साहब दास पहुंच गए मार्ग दे दर ते हाजरियां भर रहे हैं, और बाकी दो ही दिन विच रहेंगे, कल तक परसों सेवका ने अगले प्रोग्राम से चला जाना, फिर नदी नाम से इतने साल 50 साल हो गए हैं कीर्तन कर रहे हैं, पहली बारी इस टाउन के दर्शन हुए, गुरुखां के दर्शन आगे पीछे हुए, अरे सस्थान आओ। जो अगला प्रोग्राम है आप जी का निकले में अखंड पाठ भी है कीर्तन भी है, वो प्रोग्राम जिस तरह आप जी ने बनाया है संगत च अनाउंस कर दो, ताजो आने वाले प्रोग्राम जी आप इसी तरह जुड़ के गुरु की खुशियां प्राप्त कर सको, और गुरु अमरदास पातशाह आप जी की महान महान बख्शिश करो, आप जी दे दरो करो वरसाए हो सिख माई आई पातशाह आप जी की दिती हुई दात सफल करते हुए शब्द गुरु का सत्कार करते कीर्तन करते।

नाम बिना कहो को तरिया, बिन सदगुर कैसे पार परिया। बिन जिहवा कहां को बगता, बिन श्रवना कहां को सुनता। बिन नेत्रा कहां को पिखे, नाम बिना नर कहीं न लिखे। बिन विद्या कहां को पंडित, बिन अमरे कैसे राजमंडित।

साहिब गुरु नानक देव जी बचन करते हैं, ध्यान देना बाणी में पातशाह आखदे हैं।

तीर्थ गवन करे। खटकर्मा ते दुगुणे पूजा करता नाए, रंग न लगी पार ब्रह्मता सर पर नर के जाए। राज मिलख सिकदारियां धन जो बन बिस्थार, बाग सुहावे सोहणे चले हुकुम अफार।